0: Radio Victoire Horizon, la radio du moment.
1: फैमिली बारिश के गाने के लिए परेशान हो रही है
2: भाई, बना के ही सोया।
1: अरे फिर जल्दी सुनाओ।

0: Radio Victoire Horizon, la radio du moment.
1: London, what are you saying? I don't believe it.
2: ऐसा हो सकता है कि मेरा बेटा एक सपना देखे और मैं उसे पूरा ना करूं।
1: You're the best, Dad.
2: अच्छा ये बताओ बेटे तुम कहाँ हो? हम अभी तुमसे मिलना चाहते हैं।
1: Not so easy, Dad. इतने दिनों के बाद मिल रहे हो। You have to buy me a present.
2: Present? अभी या इस समय?
1: आप मुझे 5 बजे ब्लू वाटर शॉपिंग मॉल में मिलें।
2: बेटे ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या है?
1: जो मुझे चाहिए डैड वो आपको वहीं मिल जाएगा।
3: द ब्लू वाटर मॉल या Yeah, yeah, yeah, yeah, Johnny. Yeah, yeah, I'll call you later. You have a nice weekend. Yeah.
2: Do you know if he has an icon? No. What's that? Eye pack. No? Tell me.